या आपने सुना फिरोज भाई शायद बहुत बिजी रहे तो इन्होंने नया प्रोग्राम नहीं ला पाया है, इसके लिए हमें खेद है दोस्तों। लेकिन फिर भी चलो हम कुछ और प्ले करेंगे। और आपको याद रहे 12:30 बजे से आप हो जाएंगे किसके साथ? जी हाँ, रॉय सिंह के साथ। ठीक है, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। और आपको फिर बता दूं कि उसके बाद सुशीला के साथ हो जाएंगे, और फिर 3 बजे से नहीं तीन नहीं माफ करना 5 बजे से आप हो जाएंगे शशि झोकन के साथ। तो कार्यक्रम सुनते रहे दोस्तों। और अगर आप और कुछ चाहते हैं कार्यक्रम में तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, चलो सुनते हैं कुछ चुने हुए गीत आप सभी के लिए।

अरे दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल किए हैं, कह रहे हैं कि जतीश जी एक घंटा और प्रोग्राम कर दो। गुडनेस, चलो अच्छा मैं करता हूँ। जल्द में थोड़ा कुछ गाना मैं सेट कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो प्रोग्राम जो गाना मैं दे रहा था उसी तरह का कुछ और आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो गीत है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का है, वो साथ ही रहे।

और चलिए दोस्तों, अगला जो गीत है ये गीत किसने गाया, अनूप घोषाल कह रहे हैं इसमें, लेकिन ये तो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ शायद आपको ज्यादा मालूम होगा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।

जी हाँ दोस्तों, अनूप घोषाल से इस गीत को आपने सुना और आई डोंट नो इफ रिलेटेड टू घोषाल. खैर चलो, अगला जो गीत है फिल्म सिलसिला का गीत है. 1981 मूवी सिलसिला किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में आप सुनेंगे. और म्यूजिक है शिव हरी का और जावेद अख्तर का लिखा हुआ. और आपको याद होगा अमिताभ बच्चन एंड रेखा, यानी कह रहे हैं कि एक खूबसूरत सपना देखा और उस सपने से मोहब्बत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया. क्या आपके साथ ऐसे हुआ कभी? वैसे तो एक ही बार होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कौन सा गीत है. जी हाँ, देखा.

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बता दूं इस कार्यक्रम के बाद में आप रोहित सिंह के साथ हो जाएंगे। और चले फिल्म कुदरत का गीत है 1981। जी हाँ, फिल्म आपको याद होगा, किशोर कुमार का गाया हुआ, और किशोर कुमार और प्रवीण सुल्ताना है इसमें। दो रकम का वेजन है इसमें। अच्छा, ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसको आरडी बर्मन ने संगीत से सवारा है और मजरू सुल्तान ने लिखा है। रजेश खन्ना और हेमा मलिनी ये दोनों थे इस मूवी में। तो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। जी हाँ, मगर जी नहीं सकते

और इस बार दोस्तों कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जी हाँ, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है।

0: और शायद 12 मिनट रह गया है दोस्तों, और मैंने कहा चलो एक घंटा और मैं कर देता हूँ प्रोग्राम, लेकिन जाना है कहीं, तो खैर चलो आगे आगे बढ़ते हैं। और अगला जो गाना है दीवार का गाना है, 1975 मूवी, और किशोर कुमार और आशा भोसले ने मिलकर इस गीत को गाए हैं दोनों, और पर्दे पर शशि कपूर और नीतू सिंह के लिए। जी हाँ, और कौन सा गीत है, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है क्या है। चलो सुनते हैं इस गीत।
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

और अगला जो गीत है दोस्तों फिल्म धर्मात्मा का है, इसे मुकेश और कंचन कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर आप सुनेंगे, क्या खूब लगती हो।

और दोस्तों आखिरी गीत है और बस कुछ ही देर में आप रोहित सिंह के साथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद सुशीला और 5 बजे से शशि झोकर के साथ और बाद में सताक्षी के साथ और फिर नीले के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, कल सुबह होगी मुलाकात और साथ में अमिता, ठीक है? जरूर, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Bijli ka bill dekh kar har mahine shock lagta hai kya? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: Good afternoon and welcome back to Radio Rizvani. नमस्कार, राम राम, किमचो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। आपका साथ ही रोहित के साथ ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफरनामा कार्यक्रम में। आपने अपना रेडियो अभी खोला है, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक रेडियो ब्रिजवानी पर 1700 किलोहर्ट्ज़ यानी 79 किलोहर्ट्ज़ पर एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर लाइव सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो से। अब ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर, जुड़े रहेगा हमारे साथ दो घंटे के लिए खूबसूरत सा कार्यक्रम में। हमेशा की तरह हमारा फोन नंबर 3279-1701। देश विदेश में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंटरस्टेट में आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, ब्रिस्बेन में आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपने गाड़ी में, अपने घर पर, जहां तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। दो घंटे के लिए मिली जुली संगीत में जरूर से साथ दीजिएगा। आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर, याद कीजिएगा।
1: रस्तारों का कभी काली घटाने,
0: खूबसूरत सती ने दोस्तों साथियों और खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आप ही के दोस्त, आप ही के हम सफर, आपके मेजबान रोहित सिंह के साथ आप कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम का सफर ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक, साथ दीजिएगा।

और दूसरा रियायत की जगह इसी के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। अगर आपने अपना रेडियो खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय कलाकार और आज के हमारे स्थानीय कलाकार एक बार फिर स्वर्गीय दयानंद, खूबसूरत संगीत उनकी आवाज में आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर।

तो साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे दयानंद की खूबसूरत सी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत से गीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और एक खूबसूरत से गीत स्वर्गीय दयानंद की आवाज़ में।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

और दोस्त साथ याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। शाम का सफर ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। 1:10 रह चुका है, चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिली जुली संगीत और सबसे पहला गीत स्वर्गीय नरेंद्र चल चल की आवाज में। उम्मीद करता हूँ ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा।

बहुत ही खूबसूरत गीत साथियों आशा भोसले की आवाज में। वही भिजवाने पर याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक। फोन नंबर हमेशा की तरह 3279-1701। खूबसूरत गीत हमारी ओर से आपके लिए।

खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए और फरमाइश करने वाले शिवान श्वेती रवि प्रताप आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत हमारी ओर से रेडियो ब्रिज वाणी पर साथ दीजिएगा। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिक।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਰੰਗੀ ਬੀਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

आर्य वर्मा के संगीत पर किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, पर्दे पर धर्मेंद्र और रीना रॉय के लिए, रेडियो भिजवानी पर आप सभी के लिए हमारी ओर से खूबसूरत संगीत। देश विदेश में अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ये खूबसूरत संगीत रेडियो भिजवानी पर।

खूबसूरत संगीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। हमारे जितने भी नोट्स आ किशोता पे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत साथ जी का रेडियो पिजवानी पर ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक रोज के साथ है शाम का सफर में।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: शाम का सफर रोशनी के साथ।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, खूबसूरत से गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी पर। और याद कीजिएगा 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सुख के साथ आप कार्यक्रम सुन सकेंगे ठीक 2:30 बजे से 5 बजे तक, और साथ दीजिएगा हमारे साथ रहेगा, जुड़े रहेगा ठीक 2:30 बजे तक। और इसी के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर भी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: कार्यक्रम में सबसे आखिरी गीत आप सभी के लिए,

और दूसरा तीसरी गीत के साथ साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सबके साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे ठीक 5 बजे तक। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर, विनाका।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701. दोस्तों, अभी आपके साथ दिया रोहित सिंह ने चलते हैं और अब आपके साथ है शाम के सफर पर. सो साथ हमारा आपका ठीक 3-5 बजे तक. जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी AM पर. ब्रिस्बेनी 24/7 आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से. इसी के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे से बधाइयां. जी हाँ, अगर आप कुछ रेडियो ब्रिस्बेन के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर है 3279-1701, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं.

जिंदगी क्या है दोस्तों? जिंदगी एक सफर है, यहाँ मुस्कुराकर जियो, क्योंकि हर पल यहाँ एक नया आकाश है, हर दिन एक नया मौका है।

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वाणी 1701। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं। साथ हमारा आपका है ठीक 5 बजे तक आपके साथ। सो अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है रेडियो विश्वाणी AM पर और यह है शाम का सफर। और सफर की भी अभी मैंने बहुत पहले से सफर पर बजाया था, लेकिन चलते हैं सफर की बात किया जाए तो एक दिन ये सफर जो है यही छूट जाएगा दोस्तों, और ये शहर भी छूट जाएगा जहाँ हमने जन्म लिया था, वो घर भी छूट जाएगा, जिस आंगन में गिरकर चलना सीखा, जहाँ ठोकर खाकर संभलना सीखा, जहाँ दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर हर शाम खेला करते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन भी ये घर भी छूट जाएगा, दीवारें वही रह जाएगी मगर उनमें हमारी हंसी नहीं होगी, गलियां नहीं वही होगी मगर उनमें हमारे कदमों की आहट नहीं होगी, हमारी यादें बस रह जाएगी, कुछ तस्वीरों में, कुछ दिलों में और कुछ जिंदगी की तलाश में। और हम क्या कहते हैं कि हम कहीं बहुत दूर निकल गए हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग पर्दे पर अक्षय खन्ना मनीषा कोयराला के लिए आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, और बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है आ कहीं दूर चले जाए। हम चलते हैं, फरमाइशी शुरुआत करते हैं दोस्तों एश ग्रोव एवेन्यू की ओर हम चलते हैं आज। सबसे पहले फरमाइश हमारे पास आई है रजीना चौधरी और आनंद चौधरी की ओर से।

और ब्यूटीफुल कव्वाली सॉन्ग आपने सुना, ना कोई फर्क अमेरिका ना कोई फर्क गरीबी का। आज खास फरमाइश हमारे पास आई थी एशग्रोव एवेन्यू से, जहाँ मैं सुन रहे रजीना चौधरी और आनंद चौधरी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्मानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास, हम चलते हैं ग्रीन एका सिडनी की ओर। और अगली फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एका सिडनी से रजीना मालती प्रसाद की ओर से। हमेशा की तरह पर्दे पर है सुनील दत्त, माला सिन्हा, आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में अगला सॉन्ग।

जी हाँ, एक बार फिर महिंद्रा कपूर आशा भोसले की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे ग्रीन ए का सिडनी से रजिन और मालती प्रसाद। तो सो आपको पता है कि महीना क्या है, सावन का महीना। और सावन का महीना में क्या होता है, जी हाँ सभी को पता है, राखी का त्योहार है। 28 को राखी है, तो राखी पर एक बहुत प्यारा सा गीत हमने लिया है। लेकिन उससे पहले भाई बहन के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई बहन का जो रिश्ता है बहुत कभी मीठा होता है तो कभी खट्टा भी होता है, कभी रूठना है तो कभी मनाना एक दूसरे को, कभी दोस्ती तो कभी झगड़ा, कभी रोना तो कभी हंसना। यह रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग सबसे अनोखा रिश्ता है भाई बहन का राखी पर। दोस्तों चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना सावन के फुहार है। और भैया की कलाई बहन का प्यार होता है। मुबारक हो आप सभी को राखी का त्योहार।

जानवर से लिया हुआ ब्यूटीफुल सॉन्ग, प्रदीपा शमी कपूर मोहम्मद रफी की आवाज का गीत, जिसे फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान, साथ साथ में फॉरेस्ट लेक से हाफिज भाई और जबीदा खान। विशिंग ऑल इंडिया एंड पाकिस्तान अपने सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस 79th इंडिपेंडेंस डे। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान, और 16 मिनट हो गए हैं 3 बजकर हमारे स्टूडियोज में आपके साथ सुए। अगर दोस्तों अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का। अगर जिंदगी में सच बोलोगे तो बुरा लगेगा, झूठ बोलोगे तो सब खुश रहेंगे, बात तो सही है ना, बर्दाश्त करोगे तो रिश्ता लंबा चलेगा, जवाब दोगे तो बुरे बनोगे, चुप रहोगे तो सब खुश रहेंगे, बात सही है, ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को भी सबको भी बुरा लगेगा, और साथ साथ में फिर जिंदगी में हकीकत क्या है, सच क्या है, सच को क्या करें। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, एक और गीत सुनते हैं, फिर परमाशी लेकर जरूर आते हैं हम।

है शाम का सफर रेडियो विस्वानी अयम हमारे साथ शामिल हो गए हैं रेड बैंक से गंगा और गीता। चलते हैं, आप दोनों ने अच्छी गीत सुनना चाहता है तो मुझे पता है कि आपको फास्ट सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सुनते हैं।

और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। और हमारे स्टूडियोज में 3:30 ही बजने वाले हैं दोस्तों, आपके साथ सुहे। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी AM पर। कैडरोन पार्क की ओर बढ़ते हैं, फरमाइश आई हमारे पास कैडरोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से। आप दोनों के लिए लेटेस्ट।

0: और इस गीत को हमने लिया था चटनी मिक्स पर. हमारे साथ शामिल हो गए थे करुण पाक से जोड़ी और सविता.
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और मैं हूँ सु, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी. हम दोस्तों चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं हमेशा की तरह कौन. जी हाँ, विजयन हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में. आपके लिए पेश है अगला गीत.

क्या दोस्तों, हमारे पास फरमाइश आई थी सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन की ओर से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। आपके साथ सूच चलते हैं फॉरेस्ट लेक की ओर हम बढ़ते हैं। और फॉरेस्ट लेक में हमें सुन रहे हैं कौन? फॉरेस्ट लेक में मिस्टर एंड मिसेस सेतराम।

0: हमारे पास फरमाइश आई थी फॉरेस्ट लेक से, जहां मैं सुन रही हैं मिस्टर एंड मिसेस सेतराम।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
2: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान, और 20 मिनट लगे हैं 4 बजने में हमारे स्टूडियोज में। यह है शाम का सफर, और इस सफर पर एक बार फिर आपके साथ सु बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, हम बढ़ते हैं। अगली फरमाइश है हमारे पास कैलिफोर्निया USA से मैक्स प्रसाद की ओर से। बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं मैक्स, चलते हैं, अब आपकी बारी है।

अच्छा दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गए थे हमारा प्रोग्राम सुने मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए इस गीत में आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। तो चलते हैं अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास है। हम चलते हैं परमाटा सिडनी की ओर और परमाटा सिडनी में हमें सुन रहे हैं रोबिना उषा आप दोनों के लिए अगला गीत।

और बदला की फरमाइश करने वाले थे टोम मनीराम फ्रॉम जीबंग। जी हाँ, बदला की फरमाइश किया था टोम मनीराम फ्रॉम जीबंग। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं, देखे हमारे साथ कौन शामिल हो गए हैं। जी हमारे साथ ड्राइव पर है अल्पना फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन्स। अल्पना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड हैव अ सेफ ड्राइव होम।

दोस्तों हमारे साथ सफर पर है इस वक्त अल्पना फ्रॉम माइट माल्स प्लाइंस. एंड अल्पना थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन. हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम. और जीवन क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं जीवन क्या है. सभी को तो पता है लेकिन मेरी विचार है, जीवन एक किताब की तरह है जिसका हर पन्ना एक नया अनुभव सिखाता है. कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनते हैं तो कुछ हमें सबक देकर चले जाते हैं. कभी खुशी के अभी होते आते जाते रहते हैं तो कभी दुख में, लेकिन किताब का आखिरी पन्ना आने तक हमें मुस्कुराते हुए अपनी कहानी हमेशा रखना चाहिए. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी. एक मिनट हो गए हैं दोस्तों 4:04 हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर. हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मेनली वेस्ट में लक्ष्मी. और लक्ष्मी आपका फेवरेट सॉन्ग शाम का सफर रेडियो विश्वानी आई एम आपके साथ. सो

बार फिर दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाली थी लक्ष्मी फ्रॉम मैनली वेस्ट. हम चलते हैं एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए और जहां पर विजय हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. चलते हैं, आपने एक और गीत की फरमाइश सुनना चाहे आपके लिए अगला गीत.

अच्छा दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ शामिल हो गए थे विजयन जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 11 मिनट हो गए हैं 4 बजकर, साथ ही हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। तो चलते हैं अगला गीत सुनते हैं।

एक बार फिर दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाली थी अल्पना फ्रॉम माइट मास प्लेन्स, जो इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है। 20 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज की घड़ी में 4 बजकर। ए है शाम का सफर आपके साथ है, और साथ हमारा आपका ठीक 5 बजे तक।

चलते हैं दोस्तों अगले गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है. हम चलते हैं बिंगस्टाउन सिडनी की ओर. हमारे साथ जुड़े वहां पर सनी और रहमीजा. आप दोनों के लिए अगला गीत.

बातचीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे दोस्तों, वहाँ बैंकस्टाउन सिडनी से सनी और अमीजा। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक ब्रिस्बेन से। और साथ कौन दे रहा है हमारा, हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए, सूजी नारायण।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: जी हाँ दोस्तों, रे सोलर पावर की ओर से हमारे पास मैसेज आई है कि रे सोलर पावर जो है उनका जो रेट से बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया है, तो उनका फायदा जरूर उठाइए। मैं डू टेक एडवांटेज ऑफ इस, उनका जो रेट से बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया है। तो बाकी जानकारी के लिए आप खुद ही रे सोलर पावर को रे को कॉन्टेक्ट करें और उनका फोन नंबर नोट करें। फोन नंबर है 0430-525-896, रिमेम्बर 0430-528-896 पर आप कॉन्टेक्ट करें फॉर चीपर रेट। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, अगला गीत जो है रे सोलर पावर की ओर से है, एंड ही इज डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो विश्वानी।

इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 4:45 बज चुके हैं दोस्तों, है शाम का सफर। इस सफर पर आपका हमारा साथ है ठीक 5 बजे तक।

चलते हैं अगला गीत की फरमाइश की ओर हम बढ़ते हैं, मेलबर्न की ओर बढ़ते हैं, और मेलबर्न से अगला फरमाइश है हमारे पास एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से।

0: वेलकम एवरीवन।
1: चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए की ओर और वहाँ पर ड्राइव पर हमारा प्रोग्राम सुन रही है कामिनी नारायण और ललिता गौतम। हैव अ नाइस ड्राइव एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे पता नहीं आप कहाँ से किस फंक्शन से लौट रही हैं और एंजॉय द प्रोग्राम। थैंक यू।

0: DJ Jakir from Assam.
1: हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे साथ शामिल है वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम और कामिनी नारायण, जो वहाँ पर बहुत रात हो गई है, लेकिन मुझे बताया गया है दे ड्राइविंग, कोई फंक्शन से लौट रहे हैं और रेड्रो वेजवानी अपने साथ में लिए चल रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलते हैं आप दोनों के लिए एक और गीत।

हमारे साथ शामिल हो गए थे लास्ट मिनट तक सैक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम, साथ में कामनी नारायण जो इस वक्त हमारे साथ फंक्शन से वापस लौट रही है, ड्राइव पर है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर द बिग सपोर्ट फ्रॉम देयर। और इसी के साथ साथ दोस्तों 5 मिनट रह गए हैं 5 बजने में, हमारे स्टूडियोज के घड़ी में हमारा चलने का समय हुआ, लेकिन याद रखिएगा 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगे शशि जोघन, साथ उनका जरूर दीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए, वीकेंड तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

जी कहते हैं ना कि हर आदमी अपने जिंदगी में हीरो है, ठीक है, हर आदमी अपने जिंदगी में हीरो है, पर कुछ ही लोगों की फिल्में रिलीज होती है, ठीक है। मगर चलो, जिस हाल में आप हो, जहां पर हो, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और कहती हूँ आपको नमस्कार, कैमछो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम एंड बुला, ठीक है। तो आज एक हरा भरा कार्यक्रम हर हफ्ते की तरह लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए, एंड उम्मीद तो हमारी हर हफ्ते यही रहती है कि आप हमारा साथ दे रहे हो और आगे चलकर भी दोगे।

जी, बहुत ही सुहाना मौसम है आज, है ना। हाँ, धूप निकली हुई है मगर धीमी धीमी सी हवा की फुहारे चल रही है। तो उम्मीद है कि आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा है अभी तक, एंड शायद आप घर की ओर बढ़ रहे हो क्योंकि घर पे भी कामकाज करने को है। फ्रॉम टुमारो इट्स अ वर्किंग वीक स्टार्टिंग, है ना, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह। मगर फिर भी ये जो वीकेंड जब धूप निकलती है तो दिल खुश हो जाता है ना। मगर देखिए, बारिश भी आती है तो वो भी अच्छा ही है क्योंकि फूल पौधे खुश हो जाते हैं ना, पेड़ पौधे जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। सो चलते हैं, निबोड़ा निबोड़ा, याद है ये गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ली गई है। ऐश्वर्या राय, उस समय ऐश्वर्या राय थी, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन, और सलमान खान की पहली फिल्म उसी से ली गई है। नगमा आपके लिए, एंजॉय।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया फिल्म। अगर आप नहीं देखे हो तो मैं कहूंगी कि जरूर, हो सके तो किसी न किसी तरह से जरूर देखिए ये फिल्म। ये सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, एक्चुअली ऐश्वर्या राय बच्चन की ये पहली फिल्म थी और सलमान खान के साथ। तो हम दिल दे चुके सनम, और ऐसा लगा कि बेशक, सुनने में बाद में आई कि दोनों ने एक दूसरे को दिल ही दे दी। सो वेल, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी पूरे 7 बजे तक, ठीक है? और ये आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से 1701 पर, और हर बार साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक अनाउंसर अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और आपका मन बहलाते हैं, ठीक है? बट देखिए, आज कार्यक्रम में बहुत कुछ है, एंड खास तौर से माय फेवरेट पारिवारिक विषय और छोटी छोटी बातें, अपनों की सेगमेंट, न्यूज़ व्यूज़, बॉलीवुड की खबरें कुछ कुछ, और क्या है, बहुत कुछ है, नए और पुराने गीतों का संगम, ठीक है? और जब पुराने गीत आते हैं तो लोग बेहद पसंद करते हैं, मगर लुक, एवरीबॉडी हैज देयर ओन फेवरेट्स, है ना? सो चलो ये सुनते हैं अभी। हाँ जी, सो ये एक्चुअली आपके लिए मैं लेकर आई हूँ खास तौर से अक्षय कुमार की फिल्म से, इस बार साथ में निमृत, फिल्म स्काई फोर्स का ये नगमा।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फिल्म स्काई फोर्स से ली गई ये नगमा आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स ये जो नगमा है, अक्षय कुमार इसमें दिख रहे हैं. ओ माय गॉड, द एनर्जी ही हैज गॉट. इस उम्र में भी उनके पास इतने एनर्जी और ब्रेथ टेकिंग. और जी हाँ, जैसे हमने कहा कि कुछ ही देर में हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे पारिवारिक विषय, ये भी 6 बजे के बाद. ठीक है, तो कहते हैं ना कि आजकल तनाव यानी स्ट्रेस, यस यू हैड इट राइट, तनाव यानी स्ट्रेस एक बहुत ही आम शब्द हो गई है ना, जो सभी को होती है कभी ना कभी, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, मगर हम सभी अपने अपने तौर से इसे काबू में रखते हैं. और आज, ठीक है, आज इसी के बारे में हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे 6 बजे के बाद. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही स्पेशल है. अगर आपको लगता है कि किसी को सुनने की जरूरत है इस टॉपिक को, तो आप उन्हें जरूर याद दिलाइए या बताइए उन्हें कि ये टॉपिक आज होने वाली है, तो इसे हम आपके लिए लेकर आएंगे. मगर अभी तो चलते हैं, एक और गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और बातें.

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, जरूर सुनते रहिए। मैं शशि चौखन, जैसे हमने पहले कहा, पूरे 7 बजे तक आपका साथ दूंगी। आप भी इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए, ठीक है? एंड एंजॉय द टाइम, क्योंकि कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो शायद आप को लगता है कि आपने इसे पहले नहीं सुना है, तो ऐसे ही गीत हम लाने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी कई गाने सुनते भी हैं, मगर फिर भी मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं आपको सुनाने की भरसक कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो चलो इसे हम सुनते हैं। और लगता है किसी कारण बस दिस इज नॉट वर्किंग, पर कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ एक बार फिर इसे सुधारने की। बिल्कुल नहीं, कुछ हो ही गया है, क्या करूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ये गीत सुनिए। नहीं, कुछ हो गया है, मगर कोशिश तो हमारी रहती है कि आपको ऐसे ऐसे नगमे सुनाऊं, मगर कभी कभी ये जो टेक्निकल गड़बड़ी हो जाती है ना, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। मगर इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे लगता है ऐसे सुनाई दे रही है आपको, यहां तो नहीं दे रही है। एनीवे चलो कुछ और सुनते हैं।

चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। हाँ, इट माइट वर्क। वैसे तो मौसम बहुत बढ़िया है, सुन ले यही अच्छा।

हाँ जी, क्या मौसम आया है, बहुत ही फैंटास्टिक इसकी जो लिरिक्स है, एंड खास तौर से जबकि मौसम बहुत ही सुहाना है, एंड ऑफ कोर्स ब्रिस्बेन में, और हल्की फुल्की सी फुहारें चल रही है ना, तो ये एक जो गाना हम आपके लिए लेकर आए, ये 1993 की सुपरहिट फिल्म अनाड़ी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, और इसे एक्चुअली उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया था, और संगीत इसमें आनंद मिलंद, याद है आपको, उन्होंने दिया था, और बोल समीर ने लिखे थे। तो इस फिल्म में करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई दी, और बहुत ही आनंद ऐसे महसूस हो रहा था जब इसको स्क्रीन में आप देखते हैं, तो बहुत ही प्यारा। सो एनीवे, देखिए एक बार हम फिर मुड़ते हैं, और जो बीटी सॉन्ग्स है इसे आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है? तो ऐसा आपको लगे कि हाँ शुरुआत हो गई है प्रोग्राम की, तो ये फिल्म धुरंधर का गीत है, ये मुझे पता है आप सोच ही रहे होंगे कौन से गीत मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत ही पॉपुलर है ये गीत, और फिल्म में तो आपको पता ही है कौन कौन इस फिल्म में काम किए, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बेहद सक्सेसफुल फिल्म रही, वायलेंस कुछ हद तक ज्यादा थी ना इस फिल्म में।

हाँ जी, जैसा हमने पहले कहा, ये फिल्म धुरंधर का बहुत ही चर्चित गाना, और म्यूजिक कंपोजर एक्चुअली शश्वत सचदेव की निजी अनुभव और उनके बचपन के जो संघर्ष होते हैं ना, उससे जुड़ा है ये नगमा। और ये गाना बहुत ही अच्छी तरह इसको कंपोज की गई है। और खास तौर से इस गाना के पीछे, जैसे हमने कहा कि भावनाओं और कुछ ऐसे उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्हें इस गाने को इस तरह से पेश करने को जी करा, एंड बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोकप्रिय लोकप्रिय ऑफ कोर्स। एक और गीत हम सुनते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। हाँ जी, वैसे तो आप सुन रहे हैं, आपको पता है ना, एक रंगीन शाम आपके नाम, ये रेडियो ब्रिजवानी का अपना कार्यक्रम है, और हर रविवार को मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ पूरे 5 बजे से 7 बजे तक। एंड इसी तरह नए और पुराने गीतों का संगम होती है, और अभी तो नए गीत हैं, फिर इसके बाद में हम यहाँ से रुख को बदलेंगे, पद्मावत की ओर चलते हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ दीपिका, उनके अपनी ही बीवी, साथ में शाहिद कपूर भी दिखे थे।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, इसी तरह सुनते ही रहिए और हम इसी तरह आपका साथ देते ही रहेंगे। और देखिए, आज की जो इंग्लिश शब्द मैं हर हफ्ते लेकर आती हूँ ना, आज की जो शब्द है, वर्ड है, वो है पीस, PEACE। द वर्ड इज पीस। आप इसके हिंदी शब्द ढूंढकर तैयार रखिए एंड 7 बजे के नज़दीक मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगी कि इसके हिंदी शब्द क्या है। मगर देखिए, आप ढूंढिए सही, क्योंकि हिंदी हमें जानने चाहिए, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 100% तो नहीं जान सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, एंड डोंट बी शाय, दैट्स इम्पॉर्टेंट। शाय मत होइए, क्योंकि कभी कभी लोग शर्मा जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हम कुछ गलत बोल देंगे तो लोग हंसने लगेंगे। नहीं हंसेंगे, आप चिंता मत करिए, आप सीखिए तो सही, सीखिए, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने भाषा को जाने और इस तरह से जाने कि एटलीस्ट हम जानेंगे अपनी भाषा तो हम और लोगों से बातचीत कर सकेंगे ना अपनी ही भाषा में। अगर नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, आप बोलिए, डिफिकल्ट होगा ना।
2: शाम तक व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
3: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
4: नहीं, ऐसे नहीं, खुल के बोलिए, कैसा लगा? लगा कैसा?
3: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
5: हिल मत चल।
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा? या
5: या
4: ओके सॉफ्ट
5: या सॉफ्ट
4: या
5: अब लाउड या
1: यस जस्ट चिल, ठीक है? देखिए, जब हम गाने बजाते हैं तो आप गुनगुना भी सकते हो साथ में, अगर थोड़ा मन करे, मन हल्का करना है तो डांस भी कर सकते हो।
6: ओ कुड़ियो, गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी दा नाना किन खिचया, खिच के मार किन सीटी, ओ छंडो।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और हम ऐसे ऐसे गीत लाएंगे आपके लिए ताकि आपका जी खुश हो जाए। और देखिए, अगर किसी कारण बस आपका जी खुश नहीं है, आपका मन कुछ करने को नहीं जी कर रहा है, परेशानियों से घिरे हो आप, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हर समय अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे और बात करते रहेंगे तो परेशानियाँ और भी बड़ी लगने लगेगी। अगर आप हमेशा बीमारी की ही चिंता करेंगे तो मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ने लगेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो नए रास्ते और नए अवसर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है? अगर आप अच्छी बातों, खुशियों और पॉजिटिव सोच पर ध्यान देंगे तो जीवन में अच्छी चीजें भी बढ़ने ही लगेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। हमेशा याद रखिए, आपका ध्यान जिस दिशा में जाता है, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसलिए अपने सोच की जो दिशा है उसको आप बदलिए। आप उसको बदलेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी खुशियों से भर जाएगी। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, तो आप जैसा सोचेंगे, नहीं कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जैसे लोगों का संगत करते हैं तो उसी तरह आप हो जाते हैं। तो ये सब टू टेक्निकल, हाँ, मगर आप याद रखिए, बी हैप्पी। और अब हम जो गीत लेकर आए हैं वो सोनू निगम ने पहली बार, हाँ जी, सोनू निगम की बात की जाए तो माय गॉड, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गीत गाए हुए हैं। और हाँ, मुझे पता चला कि सोनू निगम टूर करने आ रहे हैं, टूर इन द सेंस कि म्यूजिक टूर अपना लेकर आ रहे हैं, एंड म्यूजिकल शो, एंड ऑस्ट्रेलिया भी आएंगे, न्यूजीलैंड भी आएंगे। चलो, शायद आपको भी देखने का मौका मिले उन्हें एक बार, फिर सुनने का मौका मिले लाइव। सो एनीवे, सोनू निगम ने पहली बार हिंदी और हरियाणी गाना गाया है जो YouTube में ट्रेंड हो रहा है। और ये एक इस नए गीत को लेकर सोनू निगम ने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और जो हमारे भावनाएं होती है ना, उसको जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया है। तो चलो सुनते हैं, कुछ अलग गाया है उन्होंने।

हाँ जी, कैसा लगा आपको इनकी जो न्यू स्टाइल ऑफ सिंगिंग ना, इसे आप कह सकते हैं, इसमें जो उन्होंने कहा है कि अब आपको ऐसे ऐसे गीत में सुनाने की कोशिश करूंगा, आप तक लेकर आने की कोशिश करूंगा। उनका कहना है कि ये केवल शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। और मुझे आपको शायद लगा होगा इस गीत के जो बीट्स है, इसकी जो चंचलता बेहद पसंद आई लोगों को। और वो कहते हैं कि कलाकारों को समय समय पर प्रयोग करते ही रहना चाहिए ना, वरना इट गेट्स वेरी बोरिंग। सो इससे संगीत की दुनिया आगे बढ़ेगी और नए लिसनर्स तक पहुंच हमारी बनाने का अवसर भी मिलता है। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को बदलते रहें। सो जीवन में ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव लानी चाहिए जीवन में। एंड या दैट ब्रिंग्स, आई मीन अ चेंज इज गुड, दे से ना। सो एनी वे, ये सब ये गीत आपके लिए हम लाते ही रहेंगे बारी बारी से। मगर देखिए, अभी कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, राइट? मगर अभी तो आप ये सुनिए। यहाँ से थोड़ी लो बीट वाले सॉन्ग्स लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे पास सभी एज ग्रुप के लिसनर्स होते हैं, सभी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना। अभिजीत की आवाज में बहुत ही प्यारा सा नगमा।

0: बहुत ही प्यारा सा है नगमा जी। आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि सब्र कीजिए, कभी कभी दुख आता है या कुछ भी होता है अपने जीवन में, या कुछ आप चाहते हो पूर्ण नहीं होता है तो आप चिंता करने लगते हो, तो लोग कहते हैं कि भाई सब्र कीजिए, जो आपके झोली में आना है वो आकर ही रहेगा। ठीक है, तो आज छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में हम इसे सुनेंगे।
1: The fruit theory, the fruit that you're eating today was yours from the day it was planted. किसी और ने उसे लगाया, किसी और ने उसे पानी दिया, it grew through sun and rain, किसी और ने उसे तोड़ा and through many hands, many roads, many cities, it's finally reached your plate. Now think about it. अगर एक छोटा सा फ्रूट इतनी लंबी जर्नी लेके आप तक पहुंच सकता है, तो जो चीज सच में आपकी है वो आप तक कैसे नहीं पहुंचेगी? Maybe life takes time, but what's meant for you will find its way to you. आपने सुना है of the fruit theory? The fruit that you're eating today was yours from the day it was planted. किसी और ने उसे लगाया, किसी और ने उसे पानी दिया, it grew through sun and rain, किसी और ने उसे तोड़ा and through many hands, many roads, many cities, it's finally reached your plate. Now think about it. अगर एक छोटा सा फ्रूट इतनी लंबी जर्नी लेके आप तक पहुंच सकता है, तो जो चीज सच में आपकी है वो आप तक कैसे नहीं पहुंचेगी? Maybe life takes time, but what's meant for you will find its way to you.
0: आपने सुना ना, सो यही है बात कि be patient. What's meant for you is on its way. So anyway, चलो और अगला गीत जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ये एक ऐसे गीत है जो बहुत बरस पहले इस गीत को की तो तैयार की गई थी। आपको बता दें, इस गाने को मुकेश जी ने एक ऐसी फिल्म के लिए गाया था जो बाद में कभी रिलीज ही नहीं हुई, और इस गाने का संगीत कल्याण जी वीर जी शाह ने तैयार किया था। बाद में विजू शाह ने इस गाने को फिर से तैयार किया और इसे पंकज उदास के आवाज में रिकॉर्ड कराया गया, और विजू शाह ने ये गाना 1971 में पहली बार सुना था और तभी से ही उन्हें वह गीत बेहद पसंद आया। और सुनील शेट्टी का नाम तो आप सुने ही होंगे, बहुत ही लोगों के चाहिदा कलाकार हैं, बॉलीवुड एक्टर है। सुनील शेट्टी का जन्म 1961 में हुआ था और उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर में एक ऐसे सुपरहिट गाने का नाम दर्ज है जो उनके जन्म के पहले ही बनकर तैयार हो गया था, और इसी गाने से उन्हें बहुत तारीफ भी मिली थी इस फिल्म में काम करने के लिए। तो सुनिए, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में ये रोमांटिक गीत।

0: हाँ जी, ये जो गीत है फिल्म मोहरा से ली गई, और आज हमारे बीच पंकज उदास जी नहीं है, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी कहीं पर सामने बैठकर गा रहा है ना. ये हमारी आवाज़ ही रह जाती है अगर ऐसे जो गीत गाने वाले होते हैं जो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग छोड़कर जाते हैं हमारे लिए. एंड कितने बरसों तक लोग इसे एंजॉय करते हैं. एंड बहुत ही बढ़िया गीत आप कह सकते हो उसे. एनीवे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं.
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365. और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
0: देखिए, अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपका स्वागत कर रही हूँ और कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ. और देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रेडियो ब्रिजवानी की एनजी पूरन को फोन कीजिए और वो आपकी बिल्कुल मदद करेगी. ठीक है?
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
0: हाँ जी, याद तो है ना कहाँ फोन करने हैं आपको. रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर एंजेला पूरन को आप फोन कीजिए, वो आपकी मदद करेगी. और अभी तो आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और 5 से 7 बजे तक आपका साथ रहेगा. और अभी बस इस नगमे के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पारिवारिक विषय. और हाँ, आज की जो टॉपिक है वो स्ट्रेस यानी तनाव. मगर ये जो गीत है बहुत ही बढ़िया गीत है ये. एंड आप इसे पसंद जरूर करेंगे. आप एंजॉय.

आपकी जिंदगी में मैं भी शामिल हो गई हूँ, है ना। उदित नारायण की आवाज में ये नगमा आमिर खान और आमिर खान पर फिल्माई गई है। साथ में आप इस फिल्म में करिश्मा कपूर को भी देख सकते हैं।

बेहद लोकप्रिय गाना 1996 की हिंदी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का है और इसे नदीम श्रवण ने इसमें संगीत दिया था और समीर ने इसे लिखा था. यस, आई थिंक समीर ने इसे लिखा था और उदित नारायण के आवाज में आप इसे सुन रहे थे. व्हाट अ वॉइस ना, अमेजिंग अमेजिंग. एंड देखिए, ये गाना 90 के दशक के सबसे बड़े रोमांटिक गीतों में गिना जाता है और आज भी लोगों की जुबान पर ये है. व्हाट अ लवली सॉन्ग. हाँ, तो एनीवे देखिए, अगर आप भी किसी की जिंदगी में आए हो तो बाहर ही बनकर रहिए, ठीक है? बाहर बनकर रहिए, कुछ और ना बनकर रह जाइए और किसी के जीवन को बर्बाद ना कीजिए, ठीक है? सो जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि बी हैप्पी एंड लेट अदर्स बी हैप्पी. सो एनीवे, ये थी उसके बारे में कुछ बातें. ये गीत, ये बहुत ही मशहूर गीत अपने समय की, जैसे हमने कहा. तो एनीवे, अब हम चलते हैं एक्चुअली आपको लेकर पारिवारिक विषय की ओर, है ना? ठीक है, तो इसे हम आपके लिए पेश करते हैं. एंड आज जैसे हमने कहा कि जो टॉपिक है वो है तनाव. तनाव यानी स्ट्रेस. तो आजकल तनाव यानी स्ट्रेस आप तो मानेंगे ही, एक बहुत ही आम शब्द हो गई है. जिसे सुनो वही कहते हैं आई एम स्ट्रेस. कभी काम का स्ट्रेस, कभी घर का स्ट्रेस, कभी बच्चों का स्ट्रेस, कभी नेबर्स का स्ट्रेस, सभी किस्म का स्ट्रेस एक ही बंदे पर. ओ माई गॉड, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. खैर एनीवे, तनाव एक बहुत ही आम शब्द हो गई है जो सभी को होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, मगर हम सभी अपने अपने तौर से इसे काबू में रखते हैं ना, और रखना चाहिए भी. अगर आप नहीं रखेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा, ठीक है? सो आप इसे संभालिए. और पहले पहल तो नहीं, आज इसे कैसे जानेंगे कि तनाव है क्या, उनके लक्षण क्या है यानी सिम्टम्स, और इसको काबू में हम कैसे रखेंगे, तो यही मैंने सोचा कि आज छोटी सी चंद लफ्ज़ आपके लिए लेकर आऊं इस टॉपिक पर. तो तनाव है ही क्या, आप सोच रहे होंगे. कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा तनाव है क्या. सो एनीवे, दिमाग पर ज़्यादा बोझ होने के कारण से ज़्यादा होती है ये, और ख़ासकर छोटी छोटी घटनाएं जैसे किसी समारोह में देर से पहुंचना, विच इज़ वेरी कॉमन, है ना? कभी चाबी ढूंढते रह गए, कभी कपड़े पहनते रह गए, कभी बाल बनाते रह गए, कभी ज्वेलरीज पहनते रह गए, बहुत सारे, कभी जूते खोजते रह गए. ओ माय गॉड, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं. कभी बच्चों को तैयार करने की नौबत, कभी हस्बैंड या उनके कुछ लॉस्ट हो गए, वो ढूंढ रहे हैं. सो बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ. कभी टायर पंचा हो जाते हैं. सो एनीवे, दिमाग पर ज़्यादा बोझ होने की वजह से ये उत्पन्न होती हैं स्ट्रेस, ओके? और ये हमारी व्यस्त जिंदगी के कारण से ज़्यादा होती है. जैसे हमने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं और देर से पहुंचना, या फिर उसके विषय में बिल्कुल भूल भी जाना, ऐसे भी होता है ना. कभी कभी हम इतना लुक फोर्ड करते कहीं जाने के लिए, मगर टाइम आने पर भूल ही जाते हैं, तो यू मिस्ड इट. नौकरी और साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी, जैसे हमने कहा बच्चों की देखरेख आदि, अन्य पारिवारिक घटनाएं और सामाजिक तनाव आदि, ये सब तनाव, इसे स्ट्रेस कहते हैं. और तनाव के लक्षण क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे, बिकॉज आजकल तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होते हैं कि लोग भूल ही जाते हैं कि ये सिम्टम्स कौन से प्रॉब्लम के हैं. सो तनाव की जो लक्षण है को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है जैसे कि भूख न लगना, और किसी किसी अवस्था में कुछ ज़्यादा खाने की मांग, चिड़चिड़ा होना या स्नैपी होना, उदास महसूस करना, ज़्यादा दर्द उठना, जैसे कि सर में दर्द, गर्दन में दर्द यानी शोल्डर्स, हाँ, कांधे पर यानी शोल्डर्स, और पीठ पर, और साथ साथ ज़्यादा थकान महसूस करना. तो ये है सिम्टम्स. और अब तनाव को काबू में हम कैसे रखें, और अगर तनाव को काबू में नहीं रखा गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक रोग लक्षण उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि मिजाज बदलना, क्रोध करना, थकान महसूस करना, माइग्रेन होना,
और साथ साथ दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक होना. सो लुक एट दैट, स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी होता है. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसको काबू में रखने के लिए इसके जो विषय में बातें करना ठीक होगा. कभी कभी लोग डिस्कस नहीं करना चाहते ना, कि कहीं किसी से बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो इसके विषय में बातें करना ठीक होगा, ना कि इसे अपने अंदर दबा कर रखना. हंसी मजाक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. कुछ हंसी मजाक हो जाए, ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो आपके आपके साथ अच्छे अच्छे बातें आपको सुनाएं और खुश रखें, ना कि दुखी कर दें. ठीक है. और अगर व्यस्त होने की वजह से कुछ आपसे ना हो सके, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप व्यस्त हैं, बिजी है, बिजी होने की वजह से कुछ आपसे ना हो सके, तो तुरंत ना कह देना अच्छी होती है, ये अच्छी बात होती है. ऐसे अवस्था में अपने अपनों वालों के जो प्यार, अपनों वालों को जो प्यार है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना इससे तनाव और भी बढ़ सकती है. और तनाव हमारे जिंदगी पर एक बोझ है, और बोझ लेकर जीना हमारे जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकती है. तो हानिकारक हो सकती है, जबकि कल का जिंदगी किसने देखा ना, ये तो आप मानते ही होंगे. कल का जिंदगी किसने देखा है, जो कुछ है आज ही है. तो क्यों ना अपनी जिंदगी को खुशहाली से भर दें, और जिंदगी के जो कांटे हैं को दूर कीजिए, और जो ना बन सके उससे दूर रहिए. तो पर हाँ एक बात है, अगर आप नहीं बताएंगे आप स्ट्रेस्ड है, तो लोग कैसे जानेंगे आप स्ट्रेस्ड है. वो तो करते ही जाएंगे जो वो करते हैं, उसको क्या पता कि आपको इससे स्ट्रेस हो रहा है ना. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसे डिस्कस कीजिए. आशा है कि ये आपके लिए कुछ फायदेमंद होगी. और जब और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनमें से जो भी मोतियाँ हैं ना, आपको ठीक लगे आप उसे उसे आप चुन लीजिए जो आपको ठीक लगे, और जो आपको ना ठीक लगे आप उसे बेअंदाज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थी ही नहीं. सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. जो आपको ना ठीक लगे उसे आप इग्नोर कर दीजिए. सो चलते हैं, ये थे पारिवारिक विषय आज आपके लिए. अब अगले गीत की बारी है. चलने लगी है हवाएं, हवाएं चल रही है ना ब्रिस्बेन में. हेलो ब्रिस्बेन, सुन तो रहे हो ना कि मैं अकेले ही बात कर रही हूं.

0: Sending a Digicel top-up to loved ones in Fiji is super easy. केवल अपने nearest dairy, supermarket और petrol station पहुँचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 top-up. आप website www.digicelinternational.com visit भी कर सकते हैं. Digicel top-up अपने family को Fiji देने के लिए. पैसा भेजने के लिए our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. केवल आपको रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर. Digicel, we are better together.
1: हाँ जी, याद रखिए आज का जो इंग्लिश शब्द है वो है पीस, राइट? PEACE. आप इसकी जो हिंदी शब्द है ये ढूंढ कर रखिए हमारे लिए. और अब हम चलते हैं यहां से, कार्यक्रम के मोड़ को लेकर चलते हैं गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, यानी सदाबहार गाने. और कई ऐसे गाने होते हैं जो सालों साल बीत जाते हैं मगर उनकी जो धुन है, उनकी जो आवाज़ है, ये सब नहीं भूलते हैं लोग.

0: हाँ जी, अभी ब्रिस्बेन में वेदर आज अभी तो 19 है मेरे ख्याल से, एंड शाम होते होते लगभग 14 तक हो जाएगी, एंड आई मीन रात्रि तक, मेरे सॉरी मिडनाइट तक इतना हो जाएगा. सो एनीवे चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, अपने स्पॉन्सर्स की ओर बढ़ते हैं.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपके साथ दूंगी, आपके साथ रहूंगी ठीक 7 बजे तक. यस, हाँ जी. ऐसे बहुत कुछ कहने सुनने को है, और समय तो ऐसे भागती है कि मैं क्या बताऊं आपको. ऐसे लगता है कि टाइम कम पड़ जाते हैं, मगर वेल दिस इज हाउ इट इज. हाँ, बट देखिए, आपको अगर एडवर्टीजमेंट करानी है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने हैं, तो आप बेशक, आपको तो याद है ना किसे आपको संपर्क करनी है. यू कॉन्टेक्ट एंजेला पूरन, और वो ऑब्वियसली आपकी मदद करेगी, एंड आपको बताएगी कि क्या आपको करना है एंड किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. तो अगला गीत पेश करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अक्सर लोग कहते रहते हैं, मगर हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना. तो कुछ बातें ऐसे होती है कि हमें ध्यान देना चाहिए इन सभी बातों पर, मगर क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग औरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, एंड जब कोई और कहता है तो अपने घर पर किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं लोग, मगर जब कोई और कहता है तो बेशक सुनते हैं. मगर एनीवे, चलो अभी आप ये गीत सुनिए.

हाँ जी, फिल्म जानवर से ली गई है नगमा, और मे बी मैं आज कोशिश करूंगी शमी कपूर के ही गीत बजाऊं, ठीक है, उन्हीं के फिल्म से. लेकिन देखिए, हमारी जो जिंदगी है ना, ये सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, ये जरूरी थोड़े ही है ना कि सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार हो. तो ये दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है, ठीक है ना, ये सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं बनी है कि जो हमें हमारी इच्छा हो उसी के अनुसार सब कुछ हो. तो हर परिणाम हमारी इच्छा अनुसार नहीं आने वाला, ये हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हर परिणाम हमारी इच्छा अनुसार नहीं आने वाला है. एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखिए. ये जिंदगी है, यहाँ खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है, ठीक है. कभी नापसंद सुनना पड़ता है, नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है. यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे तो बुरे अनुभव भी मिलेंगे जिंदगी में. ऐसा नहीं कि ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया हमारे साथ, तो बस सब कुछ खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं होता है. कभी नापसंद सुनना पड़ता है, कभी नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है. यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे तो बुरे अनुभव भी मिलेंगे. ये हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए ये, ठीक है. लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे, ठीक है. लोग आपकी तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे. सहन करना सीखो, लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है. सोना तप कर ही निखरता है. मूर्तियां जो बनती है, भगवान की मूर्तियां बनती है, कितनी मुसीबत से वो बनती है, कितने चोट खाकर भगवान सामने दिखते हैं ना. तो सहन करना सीखो, सहन करना सीखिए. और परेशानियां जो होती हैं, हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने आती हैं. हमारे ऊपर जब परेशानियां आती हैं, वो हमें कमजोर नहीं करने आती बल्कि मजबूत करने आती है. सबक लीजिए और सफर जारी रखिए. दिन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमें वही मिलेगा जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है. यकीन करो, जो सुना है वो बेस्ट है, बस इतना याद रखिए. एंड बी पॉजिटिव. हाँ, तो चलो एक और गीत हम सुनते हैं. और ये जो गीत है, ये भी बहुत ही बढ़िया सा गीत है, ठीक है, इसे आप एंजॉय कीजिए.

हाँ जी, बस समय बहुत ही कम है हमारे पास। बहुत ही कम है। मगर देखिए, मालूम नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन क्वांटस ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है कि क्या वो AI पर आधारित रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत 1,000 तक नौकरियां भारत जैसे देशों में भेजेगी। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के अनुसार प्रोजेक्ट IQ नाम के इस प्लान के तहत मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और अन्य बैक ऑफिस के काम भारत सहित दूसरे देशों में आउटसोर्स किए जाएंगे। जब एयरलाइन के सामने इस प्रस्ताव से जुड़ी खबरें रखी गई, तो क्वांटस ने मना की कि वो एसेंचर के साथ शुरुआती दौर की बातचीत कर रही है, लेकिन उसने प्रोजेक्ट की डिटेल या इस बात पर कोई जानकारी नहीं दी कि क्या ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों पर कोई असर पड़ेगा इससे। सो ये थी एक जानकारी आपके लिए। और इसके साथ साथ क्वींसलैंड के लोगों से ब्रिस्बेन 2032 की योजनाओं पर अपनी राय देने को कहा जा रहा है। देखिए, ये क्वींसलैंड स्पोर्ट और एथलेटिक सेंटर और अब विक्टोरिया पार्क तक ब्रिस्बेन का ओलंपिक स्टेडियम राजनीतिक का मुद्दा रहा है, और इसे शायद आपको इसके बारे में भी पता हो। मगर एनीवे, इसे हम छोड़ते हैं यहीं पर। और अब हाँ जी, जो शब्द हम आपके लिए छोड़े थे, शब्द था एक्चुअली शब्द था पीस। हाँ जी, पीस। तो क्या आपने ढूंढ कर रखा है उसका क्या मतलब है? पीस का हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर नहीं किया है तो इसे हम बस कुछ ही देर में इस गाने के बाद में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? तो अभी तो आप ये गाना सुनिए।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब हम चलते हैं अपने जो इंग्लिश वर्ड हम आपको दिए थे ना, पीस। तो पीस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आपको पता चला? एनीवे, आई एम श्योर आपको पता ही चल गया होगा, मगर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है? जो पीस शब्द है उसको हिंदी में शांति कहते हैं, शांति, या फिर आप इसे अमन भी कह सकते हैं। इट मीन्स स्टेट ऑफ काम, क्वाइटनेस और नो वो, ठीक है? एंड सेंटेंस में इसे अगर आप डालना चाहते हो तो सेंटेंस में आप बोल सकते हो कि हम विश्व शांति चाहते हैं, ठीक है? हम विश्व शांति चाहते हैं, मीन्स वी वॉन्ट पीस, ओके? और वी वॉन्ट वर्ल्ड पीस। शी नीड्स पीस एंड क्वाइट, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि उसे शांति और सुकून चाहिए। शी नीड्स पीस एंड क्वाइट, सो वो चाहती है, उसको शांति और सुकून चाहिए। फिर अन्य तरह से आप इसे सेंटेंस में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हो कि लिव इन पीस विथ एवरी वन, लिव इन पीस विथ एवरी वन, यानी कि सबके साथ शांति से रहो, ये है। और फिर आप कह सकते हो ध्यान से आंतरिक शांति मिलती है, यानी मेडिटेशन ब्रिंग्स इन अ पीस, हाँ। और कंट्री इज सेट, और या कंट्री इज एट पीस नाउ, देश में अब शांति है। सो दिस इज, यानी कि सबके साथ शांति से रहो, ये है। और फिर आप कह सकते हो ध्यान से आंतरिक शांति मिलती है, यानी मेडिटेशन ब्रिंग्स इन अ पीस, हाँ। और कंट्री इज सेट, और या कंट्री इज एट पीस नाउ, देश में अब शांति है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड पीस

कौन सा गीत आपके लिए पेश करूं? अच्छा, ये पेश करती हूँ आपके लिए, देखती हूँ आपको कैसा लगे। मेरे ख्याल से नो, ये सुनिए आप, ठीक है।

ये हमारे लिए आखिरी गीत है। सो चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन ज़िंदगी यादों में सिमट कर नहीं रहती है ना, वो चलती रहती है और चलती रहेगी। कुछ यादें ख़त्म नहीं होती है, बस आप इसी यादों के साथ इंतज़ार कीजिए अगले रविवार तक। मैं शशि जोखन यहाँ से कहती हूँ ओवर एंड आउट। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर एक बार फिर से दस्तक दे दी है सताक्षी ने आपके अपने फेवरेट वीकेंड शो फरमाइशी गीतों के साथ। जी हाँ, आपका फेवरेट शो फरमाइशी गीत, जहां पर हम लेते हैं आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट और आपके बेहतरीन मैसेजेस। तो आज फिर से एक और फरमाइशी गीतों के सफर के साथ मैं हाजिर हूँ। मुझे रेडियो प्रसारणी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर बताना शुरू कर दीजिए, क्या हैं आपकी फरमाइशें, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, उस गाने का नाम और उसकी फिल्म का नाम हमें लिख भेजिए। इसके साथ ही वो गाना अगर आप किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं उनके नाम का। तो चलिए, अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट करते रहिए, हमसे शेयर करते रहिए और हम शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ फरमाइशी गीतों की रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर।

मिल गया है मुझे आज का पहला मेल और ये है अमित, आपने लिखा है ब्रिस्बेन से। आप लिखते हैं कि हाय आरजी, मैं ब्रिस्बेन से अमित आपको मेल कर रहा हूँ और आज वीकेंड पर पुरानी यादें ताजा करने का मन है, तो कोई पुराना आरडी बर्मन साहब का मैजिकल गाना सुना दीजिए, या फिर अगर आपके पास हो तो आने वाला पल जाने वाला है प्लीज प्ले कर दीजिए। क्या बात है अमित जी, पंचम दा का म्यूजिक और किशोर दा की आवाज, आने वाला पल जाने वाला है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन और भी परफेक्ट हो जाता है वीकेंड के साथ। और इस गाने को जिसको आपने रिक्वेस्ट किया है, इस गाने का तो जिंदगी का फलसफा ही इतना खूबसूरत है कि बेहतर तरीके से इसे बताने वाला किशोर दा से ज्यादा बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश पर एंजॉय कीजिए, आने वाला पल जाने वाला है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: फरमाइशी गीत आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपकी फरमाइशों को इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर हमें लिख भेजिए अपनी फरमाइश। और भाई किसी खास के लिए अगर कर रहे हैं तो आप मैसेज भी लिखते रहिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, यूं ही सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

चलिए देखते हैं कि अगली रिक्वेस्ट किसकी है। और ये अगली रिक्वेस्ट है गोल्ड कोस्ट से, जिसे भेजा है हमें सुनीता ने। आप लिखती हैं, हेलो सताक्षी, मैं आज अपने हस्बैंड के लिए एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड पूरे हफ्ते बाहर रहते हैं और वीकेंड पर ही वो घर लौटते हैं, तो हफ्ते भर बाद जब वो आराम करते हैं ना, तो उन्हें देख कर ही दिल खुश हो जाता है। प्लीज चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में मेरे हस्बैंड के लिए ये गाना प्ले कर दीजिए। भाई वाह सुनीता जी, हस्बैंड आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम मिल रहा है और साथ में आप उन्हें म्यूजिकल सरप्राइज भी दे रही हैं। भाई किस्मत वाले हैं आपके हस्बैंड। तो आप सुनना चाहती हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाना चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, 90s की कल्ट रोमांस वाइब्स। चलिए हमारी तरफ से आपके हस्बैंड के नाम और सभी 90s के फैंस के नाम एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी, मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: जी हाँ, आपकी फरमाइशों का साथ सताक्षी के साथ चल रहा है रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। भाई चाहे दिल थोड़ा भारी हो या पुरानी यादें दस्तक दे रही हों, दिल के एहसासों को जो सुकून म्यूजिक के साथ मिलता है वो अल्फाजों के साथ भी नहीं मिलता है। तो बस म्यूजिक को अपने हर जख्म की दवा बनाते हुए हमें लिखते रहिए रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर अपनी पसंद के सॉन्ग्स। हाँ, ये एक और ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चलती हूँ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 1701।

अगला मेल मुझे मिला है तारिक का और आपने लिखा है सिडनी से हमें, और आप लिखते हैं कि सदाक्षी आज मौसम बहुत ही शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम सा गया है, तो मैं कोई बहुत ही बेहतरीन गजल सुनना चाहता हूँ अपने लिए। तो लीजिए भाई, आपने जिक्र किया गजल का और हम गजल जरूर प्ले करेंगे तारिक, और बस उम्मीद इतनी है कि ये गजल आप सैड होकर नहीं, वाकई मन को शांत करने के लिए सुन रहे हैं। जगजीत सिंह साहब की गजल चलेगी ना, तो आइए, क्योंकि आपने हमें लिखी नहीं है इसलिए हम होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसे प्ले करते हैं आपके लिए। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਨਾ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਨਾ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋ ਬੰਧਨ, देखा जाए तो इन वर्ड्स में कितनी गहराई है ना। वैसे दिल टूटने का दर्द और सैड सॉन्ग सुनने का मजा भी वीकेंड पर ही आता है। मंडे को तो वैसे भी आपकी जिंदगी बोरिंग हो जाती है ना, तो बस वीकेंड पर आप थोड़ा सा सैड हो सकते हैं क्योंकि इतनी सारी खुशियां होती हैं, तो थोड़ा सा सैडनेस तो चलती है ना। हाँ, ये फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

सो ब्रिस्बेन से है मेरे पास आज का अगला मेल और ये हमें रोहन ने लिखा है और आप लिखते हैं कि थोड़ा इमोशनल मूड है सदाक्षी, आज किसी पुराने दोस्त की याद आ रही है जिसके साथ काफी वक्त से मेरी बात नहीं हुई है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा बचपन साथ में गुजरा, लेकिन अब ना मैं उसे फोन कर पाता हूँ ना वो मुझे फोन कर पाता है। तो रोहन, कभी कभी ईगो को साइड में रखकर सामने वाले को एक मैसेज कर देना चाहिए, इससे रिश्ते बने रहते हैं। तो बस आप भी एक काम कीजिए ना, लिख दीजिए जल्दी से एक बढ़िया सा मैसेज अपने दोस्त के नाम और टाइप का बटन दबाते दबाते सेंड का बटन भी दबा दीजिए। तो जब तक आप ये बटन्स का खेल खेलेंगे, हम प्ले करते हैं आपके लिए आपकी पसंद का गाना जो आपने रिक्वेस्ट किया है, फिल्म दिल चाहता है से तन्हाई। सोनू निगम की आवाज में है ये गाना, चलिए आपके लिए प्ले करते हैं। मुझे लगता है ये गाना अकेलेपन का सबसे बड़ा एंथम था जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ हैं आप।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: सुदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत. जी हाँ, आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर. और अगर अभी तक आपने अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है तो देर किस बात की है, इंतजार किस बात का है भाई. हमें लिख लीजिए रेडियो ब्रिसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर. और चलिए आपके साथ आगे चलते हैं एक और ट्रैक के साथ. स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिसवानी.

अभी जिस हमारे लिसनर ने हमें मेल किया है वो है विक्रम, और आपने हमें लिखा है कनाडा से आज का ये अगला मेल, और आप कहते हैं कि सताक्षी गजलों का तो एक खुमार होता है, लेकिन देखा जाए तो कवाली का भी अपना मजा है। बहुत टाइम से रेडियो पर कोई कवाली नहीं सुनी है, ब्रिस्वानी पर भी आपने कोई कवाली नहीं प्ले की है, क्योंकि मैं आपके शोज रेगुलर सुनता हूँ, तो प्लीज आज कोई कवाली प्ले कर दीजिए ना, बहुत ही अच्छी सी कोई बहुत ही प्यारी कवाली जिसको सुनकर मजा आ जाए। तो भाई विक्रम जी, मूड तो आपने बना दिया हमारा, है ना, कवाली के बिना वाकई किसी भी रिक्वेस्टेड शो की महफिल अधूरी लगती है, और आपने बहुत बेहतर आइडिया दिया है कि बहुत दिनों से हमने रेडियो प्रस्वानी पर कोई कवाली नहीं प्ले की, तो बहुत ही जल्द आपके लिए एक बढ़िया सा कवाली वाला शो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन अभी एक बहुत ही खूबसूरत कवाली आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: फरमाइशी गीत आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर. आपकी फरमाइशों को हम दे रहे हैं पंख और उन्हें पहुंचा रहे हैं आप तक. तो इन फरमाइशों के साथ हमारा आपका समा जो है वो आगे जारी रहेगा, बढ़ता रहेगा. कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701.

मेलबर्न से नेहा ने किया है हमें आज का अगला मेल। और नेहा कहती हैं कि सताक्षी, मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और मुझे कोई ऐसा गाना सुनने का मन है जिससे नींद भी भाग जाए और झूमने का मन करे। एक्चुअली मुझे ड्राइव के वक्त बहुत तेज नींद आती है और नॉर्मली तो ड्राइवर होता है लेकिन आज ड्राइवर भी साथ में नहीं है। तो भाई नेहा, सबसे पहले तो रोड पर ध्यान रखिए, झूमने का इंतजाम हम करते हैं, नींद भगाने का इंतजाम आप कर लीजिए। पहले पानी पीजिए और उसके बाद गाने को गाना शुरू कीजिए। जब भी आप वर्ड्स गुनगुनाते हैं ना तो नींद भाग जाती है। और आपने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये गाना प्ले हो और नींद आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। नाजिया हसन जी की जादुई आवाज में है ये गाना, 80s का डिस्को बीट इसे आप कह सकती हैं। तो नेहा जी, सेफ ड्राइविंग और आपकी मस्ती के नाम प्ले करती हूँ ये ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं हमारे साथ फरमाइशी की।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: फरमाइशी गीत एंजॉय कर रहे हैं आप सदाक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आपकी फरमाइश पर आपके लिए प्ले कर रही हूँ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने। तो इन गानों की खूबसूरती आगे भी जारी रहेगी। हमें रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर बताते रहिए अपनी पसंद के गाने और उन गानों को आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं ये भी। एक और ट्रैक एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

सिद्धांत है हमारे साथ अभी और आपने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से आज का ये एक और मेल और आप लिखते हैं कि सताक्षी के और शान 90s से 2000 तक इनका जो जलवा था वो बहुत ही गजब था। मुझे याद है सताक्षी जब मैं कॉलेज में था तो इन दोनों के गाने हमारे वॉकमैन में अक्सर बजा करते थे। वो वॉकमैन का जमाना था और हमने बहुत इंजॉय किए हैं। पिकनिक हो चाहे बस का सफर हो हम स्कूल जाते हुए चुपचाप छुपा करके वॉकमैन को अपने पास रखते थे और गाने सुनते हुए चुपचाप जाते थे। मजे की बात ये रही कि हमें कोई कभी पकड़ नहीं पाया। तो सिद्धांत आपकी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं भाई शान और केके के साथ। अफसोस कि आज केके हमारे बीच नहीं है लेकिन हाँ उनके जबरदस्त गाने हमारे साथ जरूर हैं। तो चलिए वैसे भी केके की आवाज का मतलब होता है स्कूल और कॉलेज के दिनों में डायरेक्ट टाइम ट्रेवल करना। तो यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है इसी ट्रैक को सुनवाएं आपको। हाँ ये हमारे साथ सुनिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन पर फरमाइशी गीत।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: So, अभी वक्त है आज की आखिरी मेल को लेने का, और ये है एक बार फिर से कनाडा से अंजलि का मेल। और आप लिखती हैं कि सताक्षी, शो बहुत ही कमाल का है और मुझे बहुत बहुत बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट आज सभी गाने मेरी पसंद के प्ले हो रहे हैं। आई होप, मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि आज मेरी पसंद का गाना भी प्ले हो जाए और आप जरूर मेरा मेल ले लें। मैं आज सुनना चाहती हूँ उदित नारायण जी का मेलोडियस गाना, कोई भी जो आपकी पसंद का हो, और ये गाना मैं अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंजलि हमें मेल करने के लिए, और दूसरा थैंक यू मेरी पसंद का गाना सुनने के लिए, हाँ कहने के लिए। तो चलिए, उदित नारायण जी का मुझे एक गाना बहुत पसंद है, उसे आपके लिए प्ले करती हूँ। मेरे साथ सुनते रहिए आपके और आपके दोस्तों के नाम ये ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्फानी पर आप सुन रही हैं फरमाइशी।

तो दोस्तों ये था आज फरमाइशी गीतों का एक और बेहतरीन और खुशनुमा सफर। जी हाँ, आज फरमाइशी गीत हम लेकर आए थे आप सबके लिए, वो गाने जो आपने हम तक पहुंचाए हैं और आप हमसे सुनना चाहते थे। तो बस फरमाइशी गीतों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप अपनी जिंदगी को जीते रहिए, कुछ घंटे बचे हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय करते रहिए और सेलिब्रेट करते रहिए। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक नए और शो के साथ। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जमीन, सुर और सांस तैयार है? अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर मिले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में।

अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। इस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, वो एक ख्वाब की अब तक नजर नहीं आया। आदाब ख्वातिनो हजरात, मैं आपका रेडियो हम सफर नीला एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी जिंदगी कई रिश्तों के दायरों में बंधी होती है। उन रिश्तों में एक बड़ा ही पाक रिश्ता होता है दोस्ती का। हम अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, पर हम दोस्त चुन सकते हैं जिनके साथ हम बेपर्दा होकर अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। कई बार हम अपनी तरफ से जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी कुछ ऐसा कह जाता है कि दिल जार जार हो जाता है। और ऐसे में मैं ये सोचता हूं कि नुकसान किसका हुआ, उस दोस्त का जिसने दगा दिया, या उसका जिसने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया। तभी तो दिल कह उठता है कि हर एक बात को क्यों चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना कहा जाए। सुंदर ये कारवाई गजल, पेशे खिदमत है अगली गजल आप सभी के लिए। करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया। दिल की बात बदन की जबां से कह देते, ये चाहते थे मगर दिल इधर नहीं आया। अजीब ही था मेरे दौर गुमराही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर नीले, और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए। कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए। एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए। उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्त तन्हाई में जो पथरा गए।

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है? मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हमसफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर ले, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाएं गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर, गजले बहार, मैं हूं नीले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Why?

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फेरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नीले आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हैं हम तब बड़े होने की जल्दी होती है, पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है, कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है, और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक ये अर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था शाखे जर्द का एक बरगे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला। मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा। तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा। पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वा पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना, मनाना, तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है, है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवां गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन, मैं तेरा आईना हूं। मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली, मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग, दरिया हूं और प्यासा हूं। आती रुत मुझे रोएगी, जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

अब आता नहीं मजा अफसाना ए गम सुनाने में, हमको खुदा से काम आ पड़ा आखिरी जमाने में। मंजिले इश्क को दरकिनार कर बेवफा रकीब के संग, रात गुजारी उसे मिलती अबद हमारे गम के पैमाने में। ख्वातीनों हजरात, आज मैं आपको अपनी एक मजेदार आदत के बारे में बताता हूं। मैंने कई लोग देखे हैं जिन्हें कई तरह की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। कई बार पुरानी चीजों को काफी लोग जमा करते हैं, अपने कलेक्शन को बढ़ाते हैं। मुझे भी कुछ इकट्ठा करने का शौक है। मैं लम्हे इकट्ठे करता हूं, वो लम्हे जिनमें प्यार है, वो लम्हे जो प्यार से दोस्तों के साथ बिताए, सही मायने में जिए, कुछ अपने अपनों के साथ जिए, वो सब लम्हे मैं अपने दिल की संदूक में संजो कर रखता हूं। और जब भी अकेला होता हूं, अपनी इस लम्हे की संदूक को खोलता हूं और खो जाता हूं उन बातों में, उन लोगों में जो दिल के बड़े अजीज हैं, साथ ही मेरे उन लम्हों का हिस्सा हैं, एक खूबसूरत हिस्सा। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं शायद। आप बने रहिए रेडियो बिजवानी के साथ और सुनते रहिए कारवाई गजल निले के साथ। ये जानकर भी कि हमने मौत को गले लगा रखा है, खुदा मस्जिद में बैठा रहा आया नहीं हमारे आशियाने में। एक मुद्दत लगी मोहब्बत की जिस आग को सुलगाने में, उसे आया मजा झटके से बुझाने में। मेरे पांव को जो कांटे रंग न सके, उससे रंज कैसा, उम्र बीती जोशे इश्क को ये बात समझाने में।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवां गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया है, रुक कर सोचने का टाइम आ गया है। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिजर भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं नीले आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होंठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत व कुर्ब का दस्तूर होता। है आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने ये गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: summer?
1: Ye badla!
2: Na badla main, na badla wo, na badla tu. अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कम वक्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी, अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

0: Pourquoi?
1: बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स द लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आर एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनु।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: डिजिसेल बेटर टुगेदर।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ये जीवन इतना अनमोल है कि हम जो चाहें अपनी सांसों के इस दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सांसों को, इस जीवन को, इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आइए आज एक बार फिर से कुछ सद्विचारों के साथ अपने ही जीवन को समझने की एक और कोशिश करते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के सुबह के खास सफर जीवन आधार में। श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, जीवन आधार के सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ। तो चलिए इस अगले गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु, गुरु की महिमा अपरंपार है और आपको इस संसार के भंवर से अगर बाहर निकलना है, इस संसार के भंवर को पार करना है तो गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म बिना गुरु के जीना नहीं सिखा पाया है। गुरु की जरूरत हर धर्म में पड़ी है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सही ढंग से पूरा करने के लिए। इस संसार से पार पाने के लिए एक सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जीवन में अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। इसलिए गुरु पे भरोसा रखिए और गुरु से शिक्षा लेना मत भूलिए। गुरु है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत पार कर जाएंगे और इसीलिए तो शायद भगवान ने भी गुरु को खुद से ऊपर बताया है। तो आइए हम सबके गुरुओं को नमन करते हैं और सुनते हैं ये गुरुवाणी। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। ये सफर कुछ ऐसे विचारों से भरा है जो इस सुबह हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे हैं और भी हमें जीने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। एक ऐसे ही विचार को आगे सुनने से पहले एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास जी का एक एक दोहा जीवन का सही महत्व सिखा देता है। कितनी सही बात है ना, जब जैसे चक्की चलती है और दो पटरों के बीच में जो भी कुछ पिसता है वो साबुत नहीं बचता है। ठीक इसी तरह से जब दो लोगों के बीच में आप पड़ते हैं, फिर चाहे वो आपके अपने हो गैर हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। आप पर भी उंगली उठती है, आपको भी दोषी ठहराया जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच सुलह कराने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी बात में फंस कर रह जाते हैं। आप भी उसी चक्की के एक पाटे के बीच में अनाज का एक ऐसा दाना बन जाते हैं जो उसमें पिस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पत्नी और माँ के बीच में अक्सर पति फंस जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत है। असल में जिंदगी में यही होता है, जब भी आप दो लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच आपका अस्तित्व भी आ ही जाता है। और यही जीवन का सत्य है, यही रिश्तों का सत्य है। इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

साक्षी को सुन रहे हैं आप जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कुछ ऐसे विचारों पर हमारा आपका साथ जो इस सुबह के साथ हमारे आज के दिन को भी खूबसूरत बनाते हुए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ओर एक अगला कदम है। अभी एक गीत के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद जीवन आधार में और भी कई खूबसूरत बातें आपके साथ बांटूंगी। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

कितने भी अच्छे कर्म करने की सोच लें, आप कितना भी गंगा नहा लें, आप कितने भी तीर्थ कराएं, आप मक्का काशी काबा कहीं भी घुमाएं, अगर मन साफ नहीं है तो आपको शांति भी कहीं नहीं मिलेगी और ऊपर वाला भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर ग्रंथ में एक ही तो बात कही गई है कि मन के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से या फिर ईश्वर ईश्वर ढूंढने से, जगह जगह घाट घाट पे जाके ईश्वर को ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक आप दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होंगे और दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, तब तक आपके मन का मैल धुला नहीं है और तब तक ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, आपको शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को साफ करिए, रोज नहाकर तन तो धो लेते हैं, मन का मैल भी धोइए। और मन का मैल गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, मन का मैल धुलेगा मन को साफ करने से, दूसरों के लिए खासकर अच्छे विचारों को अपने दिल में अपने मन में जगह देने से, अच्छे कर्म करने से। आइए उन्हीं कर्मों के नाम ये अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

भी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है, हम उस पर ना ध्यान दे के हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन को जानने का समझने का सुबह का हमारा खास सफर जीवन आधार। आज इस सफर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इस वादे के साथ कि कल फिर से जीवन आधार में कुछ अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर से हमारी जरूर होगी मुलाकात। ऊपर वाला आपको खुश रखे, रहम दिल रखे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, आपकी खुशियां बरकरार रहें, इसी मनोकामना के साथ आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर, आरजे चांदनी जैन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आज मॉर्निंग शो। और आज है मंडे, और मंडे की बिगनिंग का मतलब है भाई फ्रेश पॉजिटिव मॉर्निंग। जी हाँ, तो चाहे भाई वीकेंड कितना भी बिजी क्यों ना रहा हो, चाहे भाई संडे को लेट उठे हो, आज एक नया दिन है, एक नई एनर्जी है और एक नया चांस है। चाय और कॉफी हमेशा रेडी रखिएगा, क्योंकि उसी के साथ सुनने का मजा आता है प्रोग्राम। जहां भी हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगला एक घंटा जो है आप और मैं फुल ऑफ न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और ब्रिस्बेन वाइब्स के साथ मिलेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। और आइए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
2: आज प्यार की होड़ी
3: दिल बोले तो
4: हार्ट हार्ट
5: हवा यार, सौदा सौदा,
3: ओहो
2: दोनों डील कर सील,
3: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

हाँ जी, तो आइए फिर शुरू करते हैं मॉर्निंग की इम्पोर्टेंट हेडलाइन के साथ। ब्रिस्बेन के लिए एक पॉजिटिव इकोनॉमिक अपडेट सामने आई है। रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में ब्रिस्बेन की इकोनॉमी को 2.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का बूस्ट मिला है। मेजर इवेंट्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ने सिटी की इकोनॉमी को स्ट्रांग पुश किया है। आपको बता दें कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रोथ से 18,000 से भी ज्यादा एक्सिस्टिंग जो जॉब्स है वो स्पोर्ट हुई है और 744 नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ब्रिस्बेन अब 2032 ओलंपिक्स की तरफ भी बढ़ रहा है और सिटी में इवेंट्स और टूरिज्म का रोल और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मतलब दोस्तों, ब्रिस्बेन सिर्फ ब्यूटीफुल सिटी ही नहीं है, बिजनेस और टूरिज्म के लिए भी एक स्ट्रांग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

0: बचाओ ना।
1: क्यों, तेरी भी तो पैन है।
2: गल चंगी बोली।
3: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: यार ना डरना कर, नच ना यार, नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नच ना, भैन दी सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, एयर शो लवर्स के लिए एक गुड न्यूज है। गोल्ड कोस्ट पैसिफिक एयर शो को क्वींसलैंड में कम से कम 2028 तक कंटिन्यू करने का भाई एग्रीमेंट हो गया है। इवेंट में लगभग 3 लाख स्पेक्टेटर्स तक अट्रैक्ट जो है होने की एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। सफर्स पैराडाइज का जो आसमान में एयरक्राफ्ट डिस्प्लेज है और एरोबेटिक परफॉर्मेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगी। क्वींसलैंड गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि इवेंट टूरिज्म और लोकल बिजनेसेस के लिए भी बड़ा बूस्ट लाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको प्लेन्स और जो थ्रिलिंग एरियल शोज है वो पसंद है ना, तो गोल्ड कोस्ट का ये इवेंट फ्यूचर कैलेंडर में जरूर जरूर जरूर मार्क कर लेना। तो आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे अगली गीत की तरफ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चाने का सफर विद आरजे चानी जैन। वैसे दोस्तों अगर हम ब्रिस्बेन में इवेंट की बात करें ना तो ब्रिस्बेन में आजकल इवेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, लाइव म्यूजिक, फूड इवेंट्स, एग्जीबिशंस और एंटरटेनमेंट सिटी में हर वीक कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा है। तो मंडे से ही प्लान बना लीजिए, यानी आज से वीकेंड घर पर आपने नेटफ्लिक्स के साथ नहीं ब्रिस्बेन एक्सप्लोर करते हुए भी स्पेंड किया जा सकता है। तो इसीलिए भाई नेटफ्लिक्स को थोड़े टाइम के लिए बंद कीजिए और भाई ब्रिस्बेन की जो चीजें हैं वो एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। सो दोस्तों आप थोड़ा सी सीरियस न्यूज साइड में रखते हैं। मेरा सवाल ये है आप लोगों के लिए कि भाई आपका परफेक्ट जो मंडे मॉर्निंग है वो क्या है? कॉफी के बिना दिन स्टार्ट नहीं होता, या फिर म्यूजिक के बिना, या फिर बस मुझे मतलब मंडे को थोड़ा और सोने दो वाला फीलिंग आता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है? सच बताइएगा, मंडे मॉर्निंग में सबसे मुश्किल क्या लगता है? बेड से उठना, ट्रैफिक, या फिर बॉस का गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड, ये डर लगता है। और एक बात याद रखिए, मंडे को ना परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है दोस्तों, बस मंडे को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाना जरूरी है। आज सिर्फ तीन छोटे से काम डिसाइड जरूर कीजिए। एक इम्पोर्टेंट काम कम्प्लीट करना, किसी अपने को स्माइल देना, और खुद के लिए थोड़ा सा भाई टाइम तो निकालना ही निकालना, ये मच वाला इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए चाय पीजिए और फटाफट से बताइए कि भाई आपका जो संडे है वो तो चले गया, लेकिन ये मंडे वाला मॉर्निंग है उसका क्या हाल है? सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हां जी, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं भाई अपने स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के अगेंस्ट एक शॉकिंग रिजल्ट का सामना करना पड़ा। डार्विन में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया और ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की सॉयल पर पहली एवर टेस्ट विक्ट्री है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हसन मोहम्मद ने मैच में 9 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरन ग्रीन ने भी सेंचुरी बनाई है लेकिन टीम को विक्ट्री तक नहीं ले जा सके। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट क्यूमंस ने भी माना कि बैटिंग ग्रुप को अपने अप्रोच का रिव्यू करना होगा। सेकेंड टेस्ट जो है वो 22 अगस्त को मैके में होना है। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की डेफिनेटली एक वेकअप कॉल है। देखते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें ऑसीज कम बैक कर पाते हैं या फिर बांग्लादेश अपनी विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू करता है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट का तड़का तो बनता है, मूवीज म्यूजिक और टीवी की दुनिया से आइए बातें करते हैं। आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में टीवी वीक लॉजीज की भी भाई काफी चर्चा है। 66th एनुअल टीवी वीक लॉजी अवार्ड सिडनी में कंप्लीट हो चुका है और इवेंट को रॉबर्ट इरविन ने भाई होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया का टेलीविजन इंडस्ट्री का ये एक मेजर एनुअल सेलिब्रेशन है। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन लिसनर्स के लिए भाई एक सिंपल सी एंटरटेनमेंट सजेशन मेरी तरफ से ये है, अगर मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा डल लग रहा है ना, हेडफोन्स लगाइए, फेवरेट प्लेलिस्ट प्ले कीजिए और अपना मूड चेंज कर लीजिए। कभी कभी दोस्तों मूड बदलने के लिए ना सिचुएशन बदलना काफी जरूरी नहीं होता है, बस साउंड ट्रैक बदलना पड़ता है। आपको क्या लगा, मैं बोलूंगी भाई थोड़ा थोड़ा मूड बदल लीजिए और थोड़ी सी सिचुएशन भी बदल लीजिए। ऐसा नहीं है भाई, कभी कभी मूड बदलने के लिए सिचुएशन को बदलना जरूरी नहीं है, बस अपने ईयरफोन्स उठाइए, साउंड ट्रैक को चेंज कर दीजिए, मूड अपने आप चेंज हो जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हां जी ब्रिस्बेन वासियों, तो आज हमने बात की है ब्रिस्बेन की इकोनॉमी की, लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूज की, स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की और सबसे इम्पोर्टेंट भाई अपने मंडे मॉर्निंग की एनर्जी की। याद रखिए दोस्तों, मंडे को ना कंप्लेन करके नहीं भाई, मंडे को क्रिएट करके स्टार्ट करो। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी में मॉर्निंग शो जानने का सफर। कल फिर मिलेंगे एक फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश म्यूजिक और फ्रेश स्टोरी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग ब्रिस्बन, कीप शाइनिंग एंड हैव एन अमेजिंग मंडे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन

सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मॉस्को में ड्रोन हमला, 6 लोगों की मौत। रूस के मॉस्को में हुए एक बड़े ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक सेंटर में आग लग गई। आग की वजह से कोलेडिनो इलाके के ऊपर आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। मॉस्को के गवर्नर आंद्रे वोलोब्योव ने इसे हाल के समय में इस इलाके में हुए सबसे बड़े ड्रोन हमले में से एक बताया। इस हमले में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यूएस ने भी माना सफल था ऑपरेशन सिंदूर। बैकफुट पर पाक, टूटा परमाणु हथियारों का भ्रम। मई 2025 में भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान के अनुभव ने परमाणु प्रतिरोध क्षमता की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान का ध्यान तेजी से अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति को मजबूत करने की ओर लगा रहा। अमेरिका की बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंसेस की रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक प्रतिष्ठान को कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा कि परमाणु हथियारों की अपनी सीमाएं हैं। वो ना तो संकट को टाल सकते हैं, ना ही भारत को पाकिस्तान के भीतर जाकर हमले करने से रोक पाए, और ना ही युद्ध के दौरान इस्लामाबाद को कोई स्पष्ट रास्ता दे सके। अब डिग्री लेकर बन सकेंगे इन्फ्लुएंसर। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ कंटेंट क्रिएशन कोर्स। सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर का विकल्प बनता जा रहा है। इसी के चलते अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी सहित कई प्रमुख संस्थानों ने पॉडकास्टिंग, स्टूडियो प्रोडक्शन और ऑन कैमरा प्रेजेंस जैसे विषयों के साथ बैचलर्स डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में हाल ही में कंटेंट क्रिएशन के लिए कोर्स शुरू हो गया है। ये कोर्स उन युवाओं के लिए है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल स्टोरी टेलर और प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। शेख हसीना का प्रत्यर्पण करे भारत, तारिक रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश ने रखी शर्तें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को एक बार फिर शेख हसीना और अन्य फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण से जोड़ दिया गया है। इससे लगता है कि अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम रहमान की भारत यात्रा अब शायद ही संभव हो पाएगी। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों देशों के अधिकारी कई हफ्तों से पीएम रहमान की द्विपक्षीय यात्रा की संभावना पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस प्रक्रिया को बिगाड़ दिया। प्रवक्ता ने कहा, हमने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य से हमने भारतीय अधिकारों से शेख हसीना और अन्य फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण तथा हादी की हत्या के आरोपी हथियारों को सौंपने का अनुरोध किया है। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, जरदारी के 3-4% हिंदू वाले बयान पर कसा तंज। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। ये मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया। वीडियो में जरदारी ने दावा किया कि उनके देश और वहां की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी देश की 3-4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करती है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में जरदारी ने कहा, भारत का नजरिया अलग है, उनके मन में ही है। ये मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया। वीडियो में जरदारी ने दावा किया कि उनके देश और वहां की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी देश की 3-4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करती है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में जरदारी ने कहा, भारत का नजरिया अलग है, उनके मन में अपना एजेंडा है। वो अखंड भारत में

0: और वैसे इधर भी सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद है आपकी ओर भी सब कुछ ठीक ठाक होगा दोस्तों। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल,
1: आज नहीं तो कल।
0: करेंगे ये बादल। Oh my goodness.
1: Why are you speaking in song language?
0: I don't know. I've been listening to song. What a difficult job I have, eh?
1: Tell me about it.
0: You know, I have to play songs and
1: thinking song.
0: At this age, I should be doing something else probably. जपना चाहिए मुझे शायद.
1: Yes, you should.
0: Nah, it's okay.
1: Tell me. Okay. Yeah. Any nice thought of the day that we can
0: set? Oh, yeah, yeah, I had one. Hold on.
1: Oh, you do?
0: I forgot.
1: Oh, you're getting forgetful.
0: देखिए, भगवान से ये मत मांगो कि जिंदगी में मुश्किलें ना आए, ठीक है? ये मांगो कि हर मुश्किल जो है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए हौसला और सही रास्ता मिले, ओके? और जब मन में विश्वास हो तो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी नजर आती है, ठीक है? तो अगर मन में विश्वास हो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, ओके? या सो मुश्किलें और मुसीबत तो आते रहेंगे दोस्तों, वन आफ्टर अनदर। सो डोंट बी, मैं बात कहना चाहूंगा, मैंने भी बहुत वरी किया अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ हो जाता, वरी करता, ये करता, वो करता। नाउ आई हैव कम टू अ एज वेयर आई लुक बैक, बट यू नो ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लाइम द लैडर स्टेप बाय स्टेप ना, एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग। ये सब मुश्किलें जो है सब ये सब बेकार की बात है दोस्तों, और बहुत ज्यादा कुछ होता है जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होता है, जब हमारे ईगो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हमारे में कंपटीशन हो जाता है एक दूसरे के साथ। दिस आर द थिंग्स दैट ब्रिंग यू मिजरी, ओके? सो सब चीज काबू में रखो और हद से ज्यादा जो कुछ देखिए आपके भाग में जो लिखा है वही आपको मिलेगा। भगवान जानता है कि आपको क्या देना है, जो कुछ मिल रहा है उसको आप स्वीकार करें और आप यही समझे कि आपके भाग में यही लिखा था, ठीक है? तो संतुष्ट रहिए, इन अदर वर्ड्स संतुष्ट रहिए जो कुछ मिला आपको।
1: बी कंटेंट विद व्हाट
0: यू हैव गॉट एंड व्हाट द लॉर्ड हैज गिवन यू, बिकॉज़ लॉर्ड नोज बेस्ट।
1: यस यस, वी नीड टू हैव ग्रेटिट्यूड।
0: फाइनली यू एग्री विद समथिंग।
1: वी नीड टू हैव ग्रेटिट्यूड।
0: या थैंक द यूनिवर्स।
1: या
0: कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स में विश्वास करते हैं। आई बिलीव इन यूनिवर्स टू, यू नो।
1: मी टू।
0: या
1: आई मीन आई थिंक यू पुट इट आउट देयर इनटू द यूनिवर्स एंड यू नो व्हाट, द यूनिवर्स आंसर्स।
0: इट डिपेंड्स व्हाट यू पुटिंग आउट देयर।
1: वेल,
0: इफ यू पुटिंग आउट गुड वाइब्स, गुड वाइब्स, गुड थिंग्स विल कम टू यू।
1: यस, ऑफ कोर्स।
0: ओके,
1: गुड वाइब्रेशन।
0: अच्छा, आप लोगों में कितने लोग हैं जिनका बैक पेन था और मैंने कहा था कि जाकर गद्दा चेंज करो या फ्लो में सो कर देखो अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ या ना हुआ, निरीक्षण है या एक दोस्तों आप बताइए हमें, हम जानना चाहेंगे, ठीक है? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते। व्हाटएवर,
1: नथिंग हैपेंड।
0: व्हाई यू लुक एट मी लाइक दैट?
1: सरप्राइज लुक। आई एम गोना पुट अ कैमरा हियर एंड आई एम गोना पुट इट टू माइंड।
0: ओह ओके, ऑलराइट।

0: अरे मैं तो पीड़ा के बात कर रहा था, आपने तो कुछ और कर दिया इसमें। खैर कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा गाना था। गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ दिस, आई रिमेंबर द वीडियो, इट्स वेरी फनी वीडियो।
1: या
0: मैन आई टेल यू मैट्रेस मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। Okay.
2: Okay, it's 7:33.
0: Yep.
2: So happy birthday if you're celebrating your birthday today. Today is the 17th of August.
0: Man, time is flying.
2: Very, very, very fast. And a happy anniversary if you're celebrating your anniversary today. We hope you have an absolutely beautiful day.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi guys, I'm Madhmeet, one of the Meet Brothers. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Salman Khan. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: जी हाँ, और आप सुन रहे हैं अमिता और मुझे, मुझको.
14: आप
13: एक गाना याद आ गया. हाँ. मुझको अपने गले लगा ले. रिमेंबर दिस वन?
14: या.
13: ओके, आजकल हम गानों से बात करते हैं. थैंक यू अजय भैया फॉर कॉलिंग. एंड लुक, द टेप दैट इज यूज्ड, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट फ्रोजन पार्ट, इज कॉल्ड पेमा फ्रॉस्ट.
14: ओके,
13: हाउ डिड आई फॉरगेट इट? ओके, दे कैन रिमेन फ्रोजन फॉर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. ओके, दे स्टे फ्रोजन एंड इट कंटेन्स फ्रोजन सोयल, रॉक्स एंड अंडरग्राउंड आइस. And when it starts thawing, even though it won't thaw all the way, that's when the above ground becomes very unstable, causing above to sink or become unstable. So that Pema rock, Pema frost is very vital, you know. That's why they don't put anything on that, because it'll freeze to you. There's no way you can keep it unfrozen. That's why it goes overhead. A little bit of knowledge there. Okay, you know, it's amazing how people live in these coldest areas, minus 70 degrees. It's amazing.
14: Oh, minus 70.
13: Centigrade.
14: I don't think I can't even take minus 70.
13: Yeah, and they live there. You can't, even at minus 20 or 30, you can't be out. You go out, you got to run back to warm yourself every 10 minutes or so. Otherwise, you'll lose your fingers and everything to frostbite.
14: So how do people go to work there?
13: Obviously, they cover themselves very well, and they have heated cars and all that. Cars never stop. Do you know that? They never stop the engine.
14: They have to keep running the engine.
13: They
14: to keep
13: running 24/7. Like yes. Otherwise, it'll just froze. It'll freeze, and the car is no good anymore.
14: So what about fuel consumption?
13: Well, Russia and all these areas, they got a lot of fuel, and it has to keep running 24 hours. Cars run 24 hours. Even the heating mats won't warm it up. That's how cold that place is. And then the cars will have a lot of other damages in the cold.
14: Seat warmers must be overworked. The seat warmers must be overworked.
13: So imagine living in a country like that, eh?
14: Oh, God, no.
13: Yeah.
14: So we are so lucky.
13: But those people living there, they love it. They wouldn't like
14: but
13: to live
14: see,
13: like we do.
14: But see, they don't know any different.
13: No, even if they did, They've been brought up.
14: Yeah, that's what I mean. Like, okay, for us, this is normal.
13: Mm.
14: Like, depends where you born.
13: Yeah.
14: And you grow in that environment, right? Yeah. So you're acclimatized.
13: You become the animal of that environment.
14: You're acclimatized to that,
13: yeah.
14: Basically.
13: Yeah. Okay.
14: Mm.
13: So, all right. That was on Pema Frost. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान. और भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे किसके साथ? सताक्षी के साथ. और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम सुनेंगे, और 3 बजे से निविया के साथ.
14: निविया के साथ 3 बजे.
13: राइट, लेट्स

0: जी हाँ दोस्तों, इस समय 24 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। अगर आए, अगर इफ़ यू एक्सीडेंटली आपने आकर यहाँ एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ ओ एयरवेज में, तो आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। और अगर आप भी कभी कुछ कहना चाहें और या कुछ गीत वगैरह आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 04-3003-1701, वेरी इजी, 04 में सब में लगाते हैं ना,
1: हाँ,
0: और सिर्फ 3003 याद रखिए, 1701 तो आप जानते ही हैं, ठीक है? यू कांट फॉरगेट दैट नंबर, दिस इज द वे आई ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स,
1: यू एसोसिएट बाय एसोसिएशन,
0: या इट सेज यू टू, या इफ यू एसोसिएट योरसेल्फ विद दैट थिंग्स देन
1: एंड इट वर्क्स, यू नो,
0: इट वर्क्स, डेफिनेटली वर्क्स, या सो anyway, okay. What are you going to play?
1: What do you
0: next?
1: Mean, what? This one?
0: आज मैं कोई गाना नहीं बजाया दोस्तों, ये जो खटिया सरका है लो, ये सब मेरा कोई नहीं था, जितना भी गाना आज आप सुना है सब अमिता का है।

नमस्कार आदाब खैर मकदम। रेडियो परसवानी 1701 एम पर सुबह की लालिमा के साथ। लालिमा बोले तो जब सूरज हल्का रेड होता है यार। हाँ देखिए, हमारे साथ रहेंगे तो हिंदी में एकदम विद्वान पंडित हो जाएंगे। तो भाई, तो इस सुबह के साथ सताक्षी आ गई है आपके लिए लेकर एक बार फिर से एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग वाला साथ। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो पर हाजिर हूँ मैं लेकर आपके लिए इट हैपेंस। आज सुबह एक बार फिर से कुछ गहरे जज्बात हैं, प्यारी सी बातें हैं। देखिए, दुनियादारी हम करते नहीं हैं, बहुत कुछ हो रहा है और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता कि किसी न्यूज़ पर या किसी नेगेटिव इशू पर आपसे बात की जाए, यार सुबह का वक्त एकदम पॉजिटिव होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि सताक्षी सुबह सुबह कुछ न्यूज़ बोल दिया करो, कुछ ऐसा बोला करो जो दुनिया में चल रहा है। यार देखो, तो सब बोल रहे हैं ना, मतलब जहां भी आप जाएंगे सिर्फ उन्हीं इश्यूज पे बात हो रही है। अगर हम दिन की शुरुआत भी उन्हीं सारे इश्यूज के साथ करेंगे, इट हैपेंस में भी वही पोथी पत्रा लेकर बैठ जाएंगे तो सुबह तो यहीं से खराब हो जाएगी ना, और मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता। इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल और वो बातें जिनको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते होंगे, है ना। तो आज भी ऐसी कुछ खूबसूरत बातों के साथ मैं हाजिर हूँ और चलिए एक और ट्रैक के साथ अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए, कहीं मत जाइएगा। इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। ऐसा मन नहीं होता, इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल और वो बातें जिनको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते होंगे, है ना। तो आज भी ऐसी कुछ खूबसूरत बातों के साथ मैं हाजिर हूँ और चलिए एक और ट्रैक के साथ अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए, कहीं मत जाइएगा। इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप और शो की शुरुआत करेंगे उनके साथ जिनके लिए पल बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और बस हमारी दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में खुशियों की कोई कमी जिंदगी में कभी ना आने पाए, है ना। आपकी जिंदगी एकदम रफ्तार से आगे बढ़ती रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और इसी विश के साथ उन्हें भी विश कर दूं जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, सो शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। और यार कमाल कर रहे हैं आप, जब ना लोग कह रहे हैं कि ना बाबा हमसे शादी नहीं हो पाएगी या शादी को वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, आप उस दौर में शादी को निभा रहे हैं, दम तो है बॉस। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी, सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो बृहस्पानी पर। और इट हैपेंस में आज आपके साथ कुछ जबरदस्त और बेहतरीन बातें हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है यार कि कोई हमें हर्ट कर देता है, हमारा दिल दुखा देता है, हमें तकलीफ होती है, रोना आता है और ये लगता है कि यार हमने इसका क्या बिगाड़ा था, हमने इससे क्या ही किया था जो इसने इस तरह से हमें हर्ट किया। यू नो, कभी कभी ना लोग इतनी समझ ही नहीं रखते हैं कि वो हमें हर्ट कर रहे हैं या उनकी बात से हमें कितनी तकलीफ होगी, उनकी समझ ही इतनी नहीं है। इसलिए बस उन्हें पीछे छोड़िए और अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़ते चलिए। हम भी आगे बढ़ेंगे एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

जब किसी से दिल लगता है और बाद में वो रिश्ता टूट जाता है तो लगता है कि सब बेकार गया। हम उनकी पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, फोटोज देखकर रोते हैं और सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई। तो सुनिए, अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है तो इट मींस उसका चैप्टर आपकी बुक में यहीं तक था। किसी को जबरदस्ती रोकना दोनों के लिए पेनफुल होता है। सो यू कैन हील एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो ब्रिस्फानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों, हम अक्सर एक्स पार्टनर से क्लोजर यानी आंसर्स मांगते हैं, आखिर क्यों किया ऐसा? पर सच ये है कि वो जो भी बोलेंगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। सो रियल क्लोजर तब मिलता है जब आप खुद से बोलते हैं, जो हुआ मे बी शायद ये मेरे लिए सही था, मैं अपनी वर्थ जानता हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में मत आने दीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।
1: Don't be a victim, don't need a rooster, don't be a victim.

भाई हम दुनिया भर से काइंडनेस की बात करते हैं, पर जब खुद की बात आती है तो बहुत हार्श हो जाते हैं। मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे नहीं होगा, ऐसा बोलना बंद करिए। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त की गलती पर उसे माफ करते हैं और संभालते हैं, वैसे ही खुद के भी अच्छे दोस्त बनिए। यू आर डूइंग ग्रेट, ट्रस्ट मी। और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ।